जानै जैसा पेख करावै बाजीगर ओहो तैसो ही साज आनै अनेक कोठरी बहुत भांत करही

जग ऐसा मोहे गुरह दिखायो तौ शरण परियो तज गर्भ सुआओ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ गौड़ी महला पंजवाओ तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण अदारा रहाओ अंतर की विद तुम ही जानी तुम ही सजन सुहेले सर्व सुखा मैं तुझते पाए मेरे ठाकर अघ अतोले वर्ण साक्यो तुमरे रंगा गुण दान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अवनाशी पूरे गुरते जाते भ्रम पौ काट किए नह केवल जबते हो मैं मारी जन्म मरण को चूको सहसा सा संगत दर सारी चरण पखार करियो गुरु सेवा वार जाओ लख वरिया जे प्रसाद एहो पौ जल तारिया जन नानक प्रसंग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवन रिजावै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत पूह मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव करत सगल कर जोरही सर्व मया ठाकर तेरी दोही पतित पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान त्यान नानक बड़े आई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा।

आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए। ब्रह्म चराए चराई पपूता पंथ एक कर पेखिया। सहज सुख सोकिनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया। जय पौ नाही तहां आसन बाध्यो सिंगी अनहत वानी। तत् विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी। ऐसा जोगी बड़भागी पेटै माया के बंधन काटै। सेव पूज करियो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटै। गौड़ी महला पंजवा। अनूप पदार्थ नाम स्नेहो सगल त्याइले मीता। हर औखद जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ। अंधकार मिट्यो तह तन ते गुर शब्द दीपक प्रगासा। ब्रह्म की जाली ताकी काटी जाको सत साध संगत विश्वासा। तारीले भव जल तारू विखड़ा बोहित साधु संगा। पूर्ण

करण प्रभ तोरी अंधकूप में हाथ दे राख्यो कछु सियानप कतना मोरी रहाउ करण करावन सब किच तुम ही तुम सम्रात नाही अनहोरी तुमरी गत मैत तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभ राते ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहै जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मैं भेद किछ नाही एक जन कई ही राम संत मैं भेद किछ नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कही ए प्रगट प्रभ हुआ आंदन कीर्तन दर्शन हरमोरी तुम सम्रत अपार अत ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक प्रभ कृपा नानक कहो प्रभ की जय कृपा उन संतन के संग संगोरी गौड़ी महला पंजमा तुम हर से तीराते संत हो नवाहे ले हो मोह को प्रक वधाते ओढ़ पहुँचाव्यो दाते रहाओ तुमरा मर्म तुम्हें ही जानिया तुम पूर्ण पुरख वधाते राखो शरण अनाथ दीन कहो करिहो तुम्हारी गाते तरण सागर वोहित चरण तुम्हारे तुम जानियो अपनी पाते कृपा जस राख्यो संगे ते पार पराते।

संत प्रसाद नानक हर भेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवा सहज समायो देव मुको सतगुर भये दयाल देव रहाओ काट जेवरी कियो दासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको आचार्य गुरहे दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मनहे प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तया अन पै ठहरायो मान आ गया सर्व सुख पाए दुख है ठाओ गवायो जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किछ आवत ना किछ जावत सब खेल कियो हर गायो रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ताह की ओट कही जैरे जिन तारे ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग्यो हर जन हुकम बूझ सुख पाई है रे जो प्रभ करै सोई भल मान्यो सुख दुख ओही त्याई है रे कोट पतित उधारे खिन मैं करते वर न लागै रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस पावै तिसे निवाजै रे सब को मात पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे देंदे तोट नाही तिस करते पूरग रहियो रतनागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास ताकी

सतगुर प्रसाद हर हर कभु ना मन हो विसारे इहा ओहा सर्व सुखदाता सगल कटा प्रतपारे रहाओ महाकस्त काट खिन भीतर रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर शरणी जलती अगन निवारे गर्भ कुंड नरक ते राख पब जल पार उतारे चरण कमल अराधत मन मह जमकी त्रास विदारे पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारे काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दतारे कर कृपा अपनो नाम दी जय नानक साध वलिहारे।

अंधे आरिया गर ज्ञान दीपक अजय आरिया बेख बिखिया पसरी अत तनी बेख बिखिया पसरी अत कनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गर भेटत भ्रम भौ खोया कह नानक एक ते आया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीबान हमारो तुही एक सेवा थारी गुर है टेक रहाओ अनेक जगत नहीं पाया गुर चाकर लै लाया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साधया बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से पले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करण करावनो तिन मह भौ है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाईया वड्डा भाग हर त्याईया लाख हिकमती जानिया आग्या तिल नहीं मानिया अंग बुद्ध कर्म कमावने गृह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करै नानक नाम नानक साधु संग मिला गौड़ी महला पंजवा बारने बलिहारने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अदरिया रहाओ करन करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोबन प्रभ तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी इहा उहा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराध्य संत संग हर मन वसै परम पौ परम मोह पौ साधिया रहाओ वेद पुराण सिमरत भने सब ऊच विराजित जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहन कीन लख चौरासी जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मर है बल बुद्ध स्यानप होमै रही हर साध शरण नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइया नीत नीत हर सेविया सास सास हर त्याईया रहाओ संत संग हर मन वसै दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै संत प्रसाद हर जापिया सो जन दुख न व्यापिया जा को गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अगन ते नानक को प्रभ मया कर मेरा मन तन वासै नाम हर गौड़ी महला पंजवा रसना जपिया एक नाम इह सुख आनंद कना आगे जी कै संग काम रहाओ कटिया तेरा अंग रोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग हर रस जन चन चाखिया ताकि तृष्णा लाथिया हर विश्राम निध पाया सो बहर न कत ही ताया हर हर नाम जाको गुर दिया नानक ताका पो गया गौड़ी महला पंजवा जाको विसरै राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाओ जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताकै कर तल नव निध सिद्ध जो जानै हर प्रभ धनी किछ नाही ताकै कमी करणै हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जाकै गृह वसै कह नानक तेन संग दुख नसै गौड़ी महला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो रहन नहीं गौ कितनो रहाओ बेबरजत बेद संतना ओआहु स्यो रे हितनो हार जुआर जुआ बिदे इंद्री वस लै जितनो हरन भरन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उधरे साध संग कृपा निध मैं दितनो गौड़ी महला पंजवा मोहे दासरो ठाकुर को धन प्रभ का खाना रहाओ ऐसो है रे खसम हमारा खिन मैं साज सवारन हारा काम करी जे ठाकुर पावा ईत चरित प्रभ के गुण गावा शरण परियो ठाकुर वजीरा तिना देख मेरा मन तीरा एक टेक एको आधारा जन नानक हर की लागा कारा गौड़ी महला पंजवा है कोई ऐसा हो मैं तोरै इस मीठी ते एहो मन हो रहा अज्ञानी मानुक भया जो ना

सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता मानस्यो मन मिलाए साप जग जीता एन बिद कुशल तेरा हमारे एन बिद कुशल तेरा मेरे मीता सतगुर सेवे सो फल पाए हृदय नाम इच्छो आप गवाए अनहद बाणी शब्द

करे। गावन तुदनु पंडत पढ़नर खीसर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनु मोहनिया मन मोहन स्वर्ग माछ पयाले। गावन तुदनु रतनु पाए तेरे आठ साठ तीरथ

रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई नकस की धरिया, सिर सिर रिजग संभाहे ठाकुर, काहे मन भाओ करिया। उडे ऊड़ आवै सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मै सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइय, तेरा अंत ना पारा वरिया।

कुंचरयास्तुला सपर कृपा दृष्ट कर फुला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर बशन है।

सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते कहू आंग तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद गाय अमेक ना जान्यो।

इतनी सेवा प्रवान करनी जी कीर्तन कर दिया बोलो दे माफी भूषण भाई साहब अगत सिंह जी आप जी पुत्र बाणी कथा राही लोगे उन्होंने पासों प्यार से शर्म करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे ही वड्डे भागां वाले हो जो गुरु चरणा नाल जुड़ के सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो सामदे दीवाना विच गुरबाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है वह विचार आपां सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तों पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिस पावन शब्द की आपां विचार कर रहे हां ये पावन शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन रसना तो उच्चारण किया होया। आसा राग विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 414 उत्ते सुशोभित है। इस पावन शब्द दे चार पदे आपा विचार चुके हाँ। कल आपा विचार कीती सी सगली जोत तेरा सब कोई वाहिगुरु जी। सारे जीवां विच तेरी जोत वरत रही है। जदों वह अपनी जोत नूं खिश लैंदा है अपनी सत्या अपनी पावर अपनी ताकत नूं खिच लैंदा है फिर भावें जिन्ना मर्जी भारा लम्मा चौड़ा तकड़ा शरीर होवे पर वह फिर ना चल सकता है ना तुर सकता है ना देख सकता है ना बोल सकता है क्योंकि परमात्मा ने अपनी जोत खिच ली। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਸੋਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ

कि भाई वो परमात्मा आप ही सब कुछ करता है ते इस संसार विच ओ ही कुछ हुंदा है जो वो परमात्मा आप करता है। वो की करता है? ताहे उसारे की करता है? इस सृष्टि नूं ढा दिंदा है ते ढा के फिर उसार दिंदा है। हुण ढाण दा भाव की है? जेकर आपां अखरी अर्थ करांगे ना ते किसे चीज नूं ढा देना ते उसारण दा भाव अर्थ करांगे भी उसारी कर देनी नवे सिरियों, ते जदों इहदे भावार्थ करांगे ते भावार्थ बनदे ने वाहिगुरु जी आप ही संसार दे जीवां नूं मारदा है ते आप ही फिर उन्हां नूं जन्म दिंदा है। कई बार जदों आपां गुरबाणी नूं पढ़दे आ जदों अखरी अर्थ करिए ते अखरी अर्थ कुछ होर हुंदे ने ते जदों उहदे भावार्थ करिए भाव अर्थ ओ बड़े दूर जाके निकलते ने। ते गुरदेव पातशाह जी कह रहे ने कहने लगे

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो, श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याही है, जिस दिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया, कर नाउन दे आवे ताए, सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलना जी। निमाणिया दे मान, निताणिया दे ताम, निओटिया दी ओढ़ने, आसरिया दे आसरा, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जी दे हजूर दास बेनती, आप जिया ने कृपा रहमत कीती है, अमृत वेले तो सोहने तख्तां दे प्रकाश मन हो के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जिया दे पावन स्वरूप दे सुख आसन दी सेवा हुई है। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है, बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना। आप जी के भाणे विच दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया ही रहना, आप दे भाणे विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनी सेजा ते विराजमान होवो, संगतां नूं खुशियां बख्शो, अमृत वेले दे जग ने दर्शन बख्श के निहाल करना। सही प्यारे मेल जिना मिले आम दा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: वाहिगुरु
1: वाहिगुरु
0: वाहिगुरु
1: वाहिगुरु
0: वाहिगुरु
1: वाहिगुरु
0: वाहिगुरु
1: वाहिगुरु
0: वाहिगुरु
1: वाहिगुरु
0: वाहिगुरु
1: वाहिगुरु
0: वाहिगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

तष्टपदी जय मात पिता सुत मीतना पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाय जय महाभयान दूत जम दला तय केवल नाम संग तेरा चल जय मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम खिन माहे उदारी अनक पुना चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सूख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया अर्गा नाम जपत हुए सुखिया ला करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत निस्तराय अनक माया रंग तिख ना बुझावे हर का नाम जपत आगा वे जी मार्गे जात अकेला तय हर नाम संग होत सुहिला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गद पाई है छूटत नहीं कोट लगबाही नाम जपत है पार पराही अनक बिगन जाय संगार है

जन के ओठ सतानी पर प्रताप जन अवर न जानी ओ तपोत जन हर सराते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं शपै हर की भगत मुक्त बहु करे नारंग जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लत्था नाम की महिमा संतर दवसाय संत प्रताप दुर्त समरसाय संत का संगवट भागी पाइय संत की सेवा नाम ते आइय नाम तुल कश अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन को ए सलोक।

कर्म करे भव आसन जैन मार्ग संयम साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तभी हमे मैल ना जावे हर के नाम संसर कशना हे नानक गुरुमुख नाम जपत गत बाहे मन कामना तीर्थ दे छुटै गर्भ गुमाना मंते उठाए सोज करै दिन सर रात बन की मैल ना तन ते जात इस देही गा भाव साधना करे मंदे गबू ना बिखया ठराए जल धोवे बहुदे अनीत शुद्ध गावे काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उधरे पतत बहुमूच बहुत सियाण जमका भाव व्यापै अनक जतन कर त्रिशन्ना तरापै भेख अनेक गन्ने बुझै कोट पाप दुर्गे नहीं सजाए छूट सनाही ऊभ पयाल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगरी जम डान गोविंद भजन मंदिर लही माने हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे जेको आपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे

हर हर जस कहत जयप्रसाद रे सगल शिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके जयप्रसाद उजगोना पहुचाए मन सा सा सिमरो प्रभु उचे जयप्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जयप्रसाद आभूखन पहरी जय मंत सिमरत क्यों आलस की जय जयप्रसाद अश्वहस्त सवारी मंत इस प्रभु को कबहू नाम बिसारी जयप्रसाद बाग मिलखत नाराग प्रो ये प्रभु बने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठ बैठ सा तिसे त्याई तिसे त्याहे जो एक अलख है ईहां ऊहां नानक तेरी रख है जय प्रसाद करे बन बहु दान मनाठ पैर कर दिसका ध्यान जय प्रसाद आचार व्यवहारी इस प्रभु को सा चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप

बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सह जय बसना, जय प्रसाद हस कर चले, जय प्रसाद संपूर्ण फले, जय प्रसाद ब्रह्मगत पावे, जय प्रसाद सुख सहज समावे, ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो, जय प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभु को मोलना मनो बिसार, जय प्रसाद तेरा बरतावरे मन मूर्त ताको जाप।

मुख मन साचा मुख साचा सोहे अवरना पेखा एक बिन कोए नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर्य सर्व को सोख

ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाह नानक जो पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे मैल ना लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मानो प्रकाश जैसे तरु प्रयागास।

प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।

महान सलोक उस तत करे अरे गजन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहुविद अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बान भ्रमे उदासी कई कोट भेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कपका विचारे कई कोट डवतन नाम ध्यावे नानक करते कांत ना पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट आंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म ने कोहर कई कोट पर धर्म को हिरे कई कोट पर दुख ना करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश प्रमाहे जिजित लाभो तित तलगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरखन बजाए कई कोट पवन पाणी बै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नाखे आतर कई कोट देव दानव इंद्र शेर शतर सगल समग्री अपने सूतारे नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार कई गुण राजस्थान सात कई गुण वेद प्राण सिमर तर शास्त्र कई गुण किए रतन समुद कई गुण नाना प्रकार जन कई गुण किए चिर जीवे कई गुण गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई गुण जख किन्नर पिशाच कई गुण भूत प्रे सूगर मेरे गाज सबते नेरा सब हूते दूर नानक आप अलिप तरिया भरपूर कई गुण पाताल के वासी कई गुण नारक सुरग निवासी कई गुण जन्मे जीवे मरहे कई गुण बहु जूनी फिरे कई गुण बैठत ही खाए कई गुण काले थक पाहे कई गुण किए धनबंध कई गुण माया में जिंत जय जय भाणा तय तय राखे नानक सब किश प्रभ का हाथे कई गुण भय भय रागी राम नाम संग तिल निभ लागी कई गुण प्रभ को खो जनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई गुण दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलियो प्रभ विनाश कई गुण मांगे सात संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको आप सुप्रसन्न नानक दे जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार कई बार बसरियो पासार सदा सदा एक एक अंगार कई कोट किन्ने बापान प्रभ ते ब्रह्माए समात ताकांत ना जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवतातम प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई गुण नाम रस पीवे अमर भय सा सा दी जीवे कई गुण नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे

सुस्थान का नहीं विनाश। मंथन नाम रते करंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जर में जर आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु गए सतगुरबान। सलोक सुखी बसा।

अनेक मरणम सियावे न जाए नानक सदी रया समाए आप से समझे आप आपे रजा सबके साथ आप की विस्तार सब काश उसका करने हार उसे पेन कह किशोय थान धनंतर एक सोए अपने चलता आप करने हार कौता करे रंग आपार मन में आप मन अपने माहे नान कीमत कहन ना जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद गना बखयानी सच सच सत सब कीना कोट मदे गने बिरला चीना भला भला भला तेरा रूपा सुंदरिया पार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवन बखयानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत

डराया सह जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्ज में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिजिया गुरु प्रसाद तत्सबुजिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई असूल नै के जन्म नै कुछ मरे आपन चलते आप ही करे आपन जामन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल में आप अनक जुगत राज थाप थाप विनाशी नायक खंड धारण धार रहे ब्रह्मंड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जन प्रभ जाता सो शोभा मंत सकल संसार उतरे तन मंत प्रभ के सेवक सकल उदारन प्रभ के सेवक दुख विसार नाभे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनु कृपा करे बड़बा गये नाम जपत पावे विश्राम नानक तन पुरख का उत्तम करमान जो किश करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए हो वै सो हो करने हार पछाणा सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टा नशिव जित समाए समाए वह सुख निधान वह सुख निधान उन्हों बने आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभ जने को जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाग सिमरन उदरी आय नानक तिस बलिहार अष्टपति टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया बे प्रतपाल सगल की चिंता जिसमन माहे दिसते बिरथा गोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप बिनासी ब्रभ आपे आप अपन किया कशु न हुए जेसो प्राणी लोचा गोए तिस बिन नाही तेरा किश काम गत नानक जब एक हर नाम रूबन दो नाही मोह है प्रभ की जोत सगल घाट सोहाय

ज्यो मंत्र को था मैं थमन त्यो गुरु का शब्द मन अस्थमन ज्यो पा खान नाव चढ़ तर प्राणी गुरु चरण लगत नस्तरा जो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन होए विकास।

राष्ट्रपति संत जना मिल करहो विचारे सिमर नाम आधार पर पाप समीत बिसारु चरण कमल हृदय में उतारो करण कारण सो प्रभ समराथ दृढ़ कर गहो नाम अरभ ए तंग संचो भगवान संजना का निर्मल मन दे का सराको मन माए सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुण उड़ता में सो तन हर सेवा ते पावे जिसो कुन जिसो कुन बाचे में सो सुख साधु संग वरीत

कोए, जागे हृदय बसे प्रभु सोए। तागो बिघन ना लागे कोए, जागे हृदय बसे हर सोए। गलता ती ठंडा हर नाऊ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पावन से पूर्ण हुए आज भक्त, भगत पाया तम बरगास। तित कर जाए बसे बनासी, कहो नानक काटी जम फांसी। तद विचार कहे जन साचा, जन्म मरा सो गाचो काचा। आवा गमन मिटे प्रभु सेवा, त्याग शरण गुरुदेव। यो रतन जन्म गाय उदार हार, हर सिमर प्राण आधार। अनुग पावना छुटन हारे, सिमृत सास्त वेद विचारे। हर की भगत करहो मन लाए, मन मंजत नानक फल पाए। संगना चाल तेरे तना, तू क्याल बटावे। मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर बनता। इंते कह हो तुम कमन सनाता, राज रंग माया विस्तार। इंते कह हो कमन छुटकार, अस हस्ती रथ सवारी। झूठा डंभ झूठ पा सारी, जिंदी तस बुझे ना बेगाना नाम विसार। नानक भशुताना गुरु की मातुले एयाने, भगत बिना बो डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल हुए तुम्हारो जीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के गिल बिख जाहे। आप जपो अपरा नाम जपावो, सुंद कैत रहत कद पावो। सारभु सादर को नाम सह सुभाए, नानक गुण गाव। गुण गाव तरी उतर समैर, बिनस जाए होमे बिख फैल। होहे अजन बसे सुख नाल, सास गिरासर नाम समाल। शाड सियानम सगरी मना, सास संग भामे साज तना। हर मुंजे संज करो व्यवहार, यहाँ सुख दरगह जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जापे को सारा है, एक सिमर एको मन आहे। एक सगे गुण गाव अनंत, मंतन जापे एक पगबंदे को। एक एक हरा पूर्ण पूर रहो ब्रभ्याप। अनक विस्तार एक देव एक रात प्रासद गए। मंतन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद। नानक जाता सलोक।

जीजंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानके को बसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथा है आप सुनने हार आपे का विस्तार जात सभावित सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाये तुम ते भिन्न नहीं किशो व्यापन सु सब जगत परोए जागो प्राप जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का वेता नानक सकल सृष्ट का जित

मंदे बहु जाए सच बा पार करो बा बारी दरगे ने मैं खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे तिस्ते दूर कहां को जाए परे राखन हार ध्याय निर्भाव जपे सकल भाव मिटे प्रभु कृपा दे प्राणी छुटा जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मनो सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तन को कोय न पहुंचनार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेगत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनुभव सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रमाण अंतर जामे पुरख प्रदान जिस मन वासा आया सोत निहाल ताके निकट न आपत काल अमर भय मरापत पाया

संजना का ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुने सुभजन सर्व्यापी राम संग रचन जिन जाता दुष्किये रहत साध भजन साधु सब कहत जो जो ये सोच सुख मान करन करावन हर प्रभ जाने अंदर बसे बाहर भी वही नानक दर्शन देख सब वही आप सद किया सब सत तिस प्रभ दे सगली उत्पात तिस भावित करे विस्तार तिस भावित एक अंकार अनक लाल की न जाए जिस भावित सिलाये मिलाए कमन निकट कमन कहिए दूरा पिया बा प्रभु अंतर गात जिस जनाए नान जना बुझाए

नानक पभे न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोहे पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पाव दरगह मान पंच सुह है दार राजान।

नमस्कार। असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत।

अमोल पंडहर, अमोल आव है, अमोल लय जाहे, अमोल पाए अमोला सुमाहे, अमोल धर्म, अमोल दीवान, अमोल तुल, अमोल परवान,

जुगत के रंग तिनके नाम है अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आव सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म पावै निशान।

नतमस्तक नहीं, मेर मस्तक करी में नमस्तक नंते नमस्तक महंते नमस्तस्तरागे नमस्तक सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले रुआल छंद व प्रसाद हरूप है अनूप है अजू है अपू है

है, अब ईत है, अब आह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रजंग प्रयाशंद नमो सर्वाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे पेखी पेहवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पहुणे, अनंगी नाथे निरसंगी प्रमाथे, नमो पहन पहने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पहन पहने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी नामे संभाती स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे संभाती विभूते,

धर्म नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो स्तंग स्नानं।

और चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं भजंग प्रयात छंद

प्रसाद। अमृत करमे अमृत धर्मे खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे अखल धर्मं अलाह करमं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग पूता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल शांत वे प्रसाद आदि रूपे अनाद मुहूर्त अजोन पुरखे पार सर्व मान तिन मान देवे पेवे आदि उदार सर्व पालक सर्व कहालक सर्व

खेल खेल अखेल खेल अनंत को फरेक देव पेह न जान ही देह बेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जान ही केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र चक्कर बकर फिरे

कर्मं करीम है, के सर्वं कली है, के सर्वं दली है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र दान्य है, के सर्वत्र गावन है, के सर्वत्र पावन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है,

बंध हैं, अपगत हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलेख हैं, देख हैं, अलेख हैं, पेख हैं, अटाह हैं।

भुगता रसावल शांत व प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे

विश्वास है, के सर्वरगवान है, हमे सलरवान है, तुम अमल तुम ईर है, सुबह तल अरीर है, परम ईस है, सुबह तल अदीस है,

तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिख मार्ग चलना लाभ। लोभ अहंकार ताज त्रिसना बहुत ना ही बोलना। खनेहो तिखी बाल हो निकी तो मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तरिया हर वासना समानी कहे नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। जो तू चलाए तेव चलह स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे। जिब तू चलाए तेवे चलहे जिना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाए से हर

पजाय विण सहज सह सन जाय नह जाय ससा कित संयम रह कर्म कमाय सह से जियो मलीन है कित संयम धोता जाय मन तो बहु शब्द लागो हर से और अह हो चित लाय कहे नान गुर प्रसादी सहज उपजाय

यह निर्मल सदगुरते करनी कुमाणी कूड़ की सोए पाहु चै नाही मन साध समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले।

नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जे को गुर ते वे मुख हो वै बिन सतगुरु मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर थै कोई पुछो विवेकिया जाए अनेक जूनी परम आवे बिन सतगुरु मुक्त न पावे फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए

मिलया दिव दृष्ट होई ए श्रवण हो मेरे हो सात्य सुनना नो पठाए सात्य सुनना नो पठाए श्री लाए सुनो सतबाणी जित

चौथा हर हर नाम भजो पर खोतम सब बिनसे दल दलगा भव जन्म मरण मिट्यो गुर सब दी हर अस्त्र सेव सुख समगा मेरे मन भज राम नाम अत पिरगा मैं मन तन अरप धरियो गुर आगै सिर वेच लियो मुल महगा रहाओ नरपत राज रंग रस मन बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय से डंड लगाना फिर पछताने हथ फलगा हर राख राख जन किरम तुमारे सरनागत पुरख प्रतपलगा दर्शन संत देहो सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुमगा तुम सम्रत पुरख बटे प्रभ स्वामी मोको कीजे दान हर निमगा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विटो सद घुमगा सूही महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठ है रंग गुर तुठ हर रंग चाड़िया फिर बहन होवी भंग मेरे मन हर राम नाम कर रंग गुर तुठे हर उपदेसिया हर भेटिया राव निसंग रहो मुंद आनी मन मुखी फिर आवन जाना अंग हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा भाव सहलंग हम मैल भरे दो चारिया हर रखो अंगी अंग गुर अमृत सर नवल आया सवलाथे किलबक पंग हर दीना दीन दयाल प्रभ सत्संगत मेलो संग मृ संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग सूही महला चौथा हर हर करह नित कपट कमावे हिरदा शुद्ध न होई आंदन करम करह बोते रे सुपना सुख न होई ज्ञानी गुरबिन भगत न होई कोरा रंग कदे न चढ़ै जे लोचा सब कोई रहाओ जप तप संजम वर्त करे पूजा मन मुख रोग न जाई जब तब संजम वर्त करे पूजा मन मुख रोग न जाए अंतर रोग महाभिमाना दूजा पाए खुआई बार पेग बहुत चतराई मनु अधै दिस धावे हमें व्यापै सबदन चीनै फिर जूनी आवे नानक नदर करे से सो बूझै सो जन नाम त्याए गुर प्रसादी एको बूझै एक माहे समाए सूही महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमंद नगरी खोज खुजाई हर हर नाम पदार्थ पाई मेरे मन हर हर सांत बसाई तिसना अगन बुझी खने अंतर गुर मिलिया सब दुख गवाई रहो हर गुण गावा जीवा मेरी माई सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई हाँ हर प्र प्यारा ढूंढ ढूढ़ाई सतसंगत मिल हर रस पाई धुर मासक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुठा मिले हर पाई सूही महला चौथा हर कृपा करे मन हर रंग लाए गुरमुख हर हर नाम समाए हर रंग राता मन रंग माने सदा आनंद रहे दिन राती पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ हर रंग को लोचा सब कोई गुरमुख रंग चलूला होई मनमुख मुगद नर कोरा होए जैसो लोचा रंग न होवै कोए नदर करे ता सतगुर पावै नानक हर रस हर रंग समावै सूही महला चौथा जेवा हर रस रही अगाए गुरमुख पीवै सैर समाए हर रस जन चाखो जे भाई तो कत अनंत साध लोभाई रहो गुरमत रस राखो धार हर रस राते रंग मरार मन मुख हर रस चाख्या न जाए होमै करै बहुती मिला सजाए नदर करेता हर रस पावे नानक हर रस हर गुण गावे सूही महला चौथा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नीच जात हर जपते आयो तुम पदवी पाए पूछो बिदर दासी सतै किसन उतरिया घर जिस जाए हर की कथ कथा सुनो जन पाए जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ रविदास चमार स्तुत करे हर कीर्त निमख एक गाए पतत जात उत्तम भया चार वरन पै पग आए नाम दे प्रीत लगी हर सेती लोक छीपा कह बुलाए कतरी ब्राह्मण पिठ दे छोडे हर नाम देओ लिया मुख लाए जितने भगत हर सेवका मुख अठ सा तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए जे नानक तिन को वंदन परसे जे कृपा करे हर राय सूही महला चौथा तिनी अंतर हरिया राध्या जिन को तुर लिखिया लिखत लारा तिन की बखीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याय मन मेरे मन त्याय हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ तुर भगत जना को बख्सिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख होवै सोन की रीस करे तिस हर तपलत मोहकारा से भगत से सेवका जिना हर नाम प्यारा दिन की सेवा ते हर पाईया सिर निंदक कै पवै छारा जिस घर विरती सोई जाने जगत गुरु नानक पूज करो बिचारा चहो पीढ़ी आदि जगाद बखीली किन न पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा
ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆ ਰਾਧੀਐ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿਤ ਸਹਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹੋਰਤ ਬਿਧ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਭਾਈ ਜੇ ਹਰਤ ਪਰਤ ਹਰ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ ਰਹੋ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗ ਹਰ ਧਨ ਖਟੀਐ ਹੋਰਥ ਹੈ ਹੋਰਤ ਉਪਾਏ ਹਰ ਧਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹਰ ਰਤਨੈ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀਆ ਹਰ ਰਤਨ ਧਨ ਵਿਹਾਜੈ ਕੱਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਐ ਵਾਕ ਹਰ ਧਨ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਧਨ ਰਤਨ ਚ ਵੇਹਰ ਮਾਣਕ ਹਰ ਧਨੈ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਤੈ ਹਰ ਭਗਤੀ ਹਰ ਲਵਿਲਾਈ ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾਹੀ ਹਰਤ ਪਰਤ ਹਰ ਧਨੈ ਕੀ ਭਗਤਾ ਕੌ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਧਨ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ ਸਾਚਾ ਇਹ ਹਰ ਧਨ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੈ ਪਾਣੀਐ ਜਮਦੂਤੈ ਕਿਸੈ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਧਨ ਕਉ ਉਚਕਾ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਡੰਡ ਨਾ ਲਗਾਈ ਸਾਖਤੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਤਿਨਾ ਇੱਕ ਵਿਖ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ ਹਲਤੈ ਵਿੱਚ ਸਾਖਤ ਹਿੱਲੇ ਭੈ ਹੱਥੋਂ ਛੁੜਕ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪਲਤ ਸਾਖਤ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਢੋਏ ਨਾ ਪਾਈ ਇਸ ਹਰ ਧਨ ਕਾ ਸਾਹ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਸੰਤੋ ਇਸ ਹਰ ਧਨ ਕਾ ਸਾਹ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਸੰਤੋ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਹਰ ਧਨ ਲੱਦ ਚਲਾਈ ਇਸ ਹਰ ਧਨੇ ਕਾ ਤੋਟਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਗੋਗਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣਾ ਰਵੈ ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਵਰਨੀਐ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰਹਾਓ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਸਾਖਤ ਕਾਮਨਾ ਅਰਥ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੇਵ ਦੇ ਸੋ ਨਿਹਵਲ ਸਭ ਅਗਿਆਨ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਦੇ ਉਨਕਾ ਉੱਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗਮਾਨ ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਤੇਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

दिखलाई। सांग तार थम्यो पसारा तब एको एक अंकार। कवन रूप दृष्ट्यो बिनसायो कतहे गयो ओहो कतते आयो रहाओ। जलते उठे निक तरंगा कनिक भूखन कीने बोरंगा। बीज बीज देख्यो वो प्रकारा फल पाके ते एक अंकारा। सहस कटा मैं एक आकाश कट फूटे ते ओही प्रगास। परम लोभ मोह माया विकार भ्रम छूटे ते एक अंकार। ओ अविनाशी बिन सतनाही ना को आवै ना को जाही। गुर पूरे हो मैं मल धोई कौ नानक मेरी परम गत होई। सूही महला पंजवा कीता लुड़े सो प्रभ होए तुझ बिंदु जा नाही कोहे। जो जन सेवे तिस पूरन काज दास अपने की राख लाज। तेरी शरण पूर्ण दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाओ। जल थल महियल रहया भरपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पति आरै कछु ना पाईऐ साच लगे ता हो मैं जाइऐ। जिसनो लाए ले सो लागै ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। दुरमत जाए परम पद पाहे गुर प्रसादी नाम ते आए। दोए कर जोड़ करियो अरदास तुद भावै ता आण है रास। कर कृपा अपनी भगती लाए जन नानक प्रभ सदा ते आए। सूही महला पंजवा तन सुहागन जो प्रभु पछानै मन आह मानै हुक्म तजै अभिमानै। प्रेह स्यो राती रलिया मानै सुन सखिए प्रभ मिलन निसानी। मन तन अर्प तज लाज लुकानी रहाओ। सखी सहेली को समझावै सोई कमावै जो प्रभ पावै सा सुहागण अंक समावै। गर्भ गहेली महल न पावै फिर पछुतावै जब रैण बिहावै। कर्महीन मन मुख दुख पावै बिन्हो करी जे जाना दूर। प्रभ अविनाशी रहया भरपूर जन नानक गावै देख हदूर। सूई महला पंजवा ग्रह वस गुर कीना हौ कर की नार। दस दासी कर की दीनी पतार। सगल समगरी मैं कर की जोड़ी आस प्यासी पिर कौ लोड़ी। कवन कहा गुणकंत प्यारे सो कड़ स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ। सत सिंगार बहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया। कंगन वस्त्र गहने बहे बने सुहावे तन सब सुख पावै जां पिर कर आवै। गुण कामण कर कंत रिझाया बस कर लीना गुर परम चुकाया। सब ते ऊंचा मंदर मेरा सब कामण त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा। प्रगटिया सूर जोत उजियारा सेज बिछाई सरद अपारा। नव रंग लाल सेज रावण आया जन नानक पिर तन मिल सुख पाया। सूही महला पंजवा ओम क्यो हीयो मिलन प्रवताई खोजत चरहियो देख्यो प्रेह जाई। सुनत सदेसरो प्रेह ग्रह सेज विछाई प्रम प्रम आयो तौ नजर ना पाई। किन विद ही अरो तीरै निमानो मिल साजन हाओ तुझ कुरवानो रहाओ। एक सेज बिछी तन कंता तन सूती पिर सद जगंता। पियो मदरो तन मतवंता तन जागै जे पिर बोलंता। पई निरासी बहुत दिन लागे देश दसांतर मैं सगले झागे। खिन रहन ना पाव्यो बिन पग पाए हुई कृपाल प्रभ मिलहे सुभागे। भयो कृपाल सत्संग मिलाया बूझी तापत करहे पिर पाया। सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया। जय देखा तह पिर है पाही खोल्यो कपाट ता मन ठहराई रहाओ।
ਕਹਾਉ ਦੂਜਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

कहाउ भीख दिखावै सच न कमावै कहतो महली निकट न आवै अतीत सदाई माया का माता मन नहीं प्रीत कह मुख राता कहो नानक प्रभ बिनस सुनी जय गोचल कठोर कामी मुक्त की जय दर्शन देखे की वड़ियाई तुम सुख दाते पुरख सुपाई रहाओ दूजा सुई महला पंजवा बुरे काम का ओठ खलोया नाम की वेला पै पै सोया अवसरे अपना बूझे ना ए आना माया मोह रंग लपटाना रहाओ लोभ लहर कौ बिगस फूल बैठा साजना का दर्शन ना डीठा कबू न समझे अज्ञान गवारा बहर बहर लपट्यो जंजारा रहाओ बेखै नाद करन सुन पीना हर जस सुनत आलस मन की नाम दृष्ट नाही रे पेखत अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोए साध संग दी जय तौ किछ पाईऐ जो होइऐ रीना जिसे बजाए तिस नाम लैना रहाओ सुही महला पंजवा घर में ठाकुर नजर न आवै गल मह पाहुण लै लटकावै परमे पूला साकत फिरता नीर विरोलै खप खप मरता रहाओ जिस पाहण कौ ठाकुर कहता ओ पाहण लै उस कौ डुबता गुन है गह गुन है गा।

पेखत पेखत ऊठ सदारा, ऊच ते ऊच ताका दरबारा, कई जंत विनाही उपारा, दूसर होआ ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सूही महला पंजवा, सिमर सिमरता को हौ जीवा, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सो हर मेरा अंतर जामी, भगत जना के संग स्वामी रहाओ, सुन सुन अमृत।

सफल मूरत दर्शन बलिहारी ही चरण कमल मन प्राण अधारी रहाओ। साध संग जन्म मरण निवारी अमृत कथा सुन करन अधारी। काम क्रोध लोभ मोह त्याग।

ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक शरणाया सूई महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिया नाही निकट वास्त कौ जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किच कर जित छुटे परानी हर हर नाम जप अमृत वाणी रहाओ घोर

अत कचील मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बाधा महागर्त महने करत जाता नानक की अरदास सुनी जाय डूबत पान प्रभ मेरे ली जाय सूही महला पंजवा जीवत मरहै बुझे प्रभ सोए तिस जन्म कर्म प्राप्त होए।

अपन जवाओ गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा आनंद विनोद मंगल सुख ताहा चल सखिए प्रभ।

मन तन प्राण जियो अरपाहा, हर सिमर सिमर मान मोकटाम। दीन दयाल करिहो उत्साहा, नानक दास हर शरण समाहा। सूही महला पंजवा। बैकुंठ नगर जहां संत वासा, प्रभ चरण कमल रिद माही निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक व्यंजन तुझ भोग पहुंचावो रहाओ।

जनता की जन्म जन्म के पै मोह निवारे नानक दास प्रभु कृपा तारे सूही महला पंजवा निकवींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभु अपना करे आओ तुम्हें छिड़ाए लियो जने अपना उर्ज परहो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दोख महा बिकराला खिन मह दूर किए दयालाओ सोग रोग बेपत अत पारी दूर पई जम नाम मुरारी दृष्ट तार लीनो लड़लाए हर चरण गए नानक शरणाए सुई महला पंजवाओ दीन छड़ाए दुनी जो लाए दुही सराई खुनामी कहाए जो तिस भावै सो परवाण अपनी कुदरत आपे जान रहाओ सच्चा धर्म पुन भला कराए दीन के तैसो दुनी न जाए सर्व निरंतर को जागै जित जित लाया तित तित को लागै अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोलै बुलाया तेरा सूही महला पंजवा प्रातः काल हर नाम उचारी ईत ऊत की ओट सवारी सदा सदा जपिए हर नाम पूर्ण होवे मन के काम रहाओ।

सुख आनंद बिहावै जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक नाम ते आया सूही महला पंजवा गुर पूरे जग पै दयाल दुख बिन से पूरन पई काल पेख पेख जीवां दर्श तुम्हारा चरण कमल जाई बलिहारा तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ साध संगत स्यों प्रीत बने आई पूर्व कर्म लिखत तुर पाई जप हर हर नाम अचार्य प्रताप जाल न साखे तीने ताप निमख न विसरे हर चरण तुम्हारे नानक मांगे दान प्यारे सूई महला पंजवा से संजोग करहो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे सुन बेनती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदार साला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करहे बसे तिस नेरा

साध संग तरै पै सागर हर हर नाम सिमर रतनागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिनसे गुरपूरे मिल पाप तजायण रहाओ जीवन पद भी हर का नाओ मन तन निर्मल साच सुवाओ।

ओ तर स्वामी प्रभ कृपा धारहि नानक दास हर शरण द्वारे सूही महला पांजवा संत प्रसाद निःचल कर पाया सर्व सुख फिर नहीं डुलाया गुरु त्याय हर चरण मन चीने ताते करते अस्थर कीने रहाओ गुण गावत चुत अविनाशी ताते काटी जम की फासी कर कृपा लीने लड़ लाए सदा आनंद नानक गुण गाए सुई महला पंजवा अमृत वचन साध की वाणी जो जो जपै तिसकी गत होवै हर हर नाम रित रसन बखानी रहाऊ।

ना गुर का शब्द सुनाया, मन परदेसी जे थिए सब देश पराया। गुर महली कर आपने सो भरपूर रीणा, सेवक सेवा ता करे सच शब्द पतीना। सचे शब्द पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरे, आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे। गुरु शब्द मेला ता सुहेला बाजंत अनहद बीणा, गुर महली कर आपने सो भरपूर लीणा। कीत्या क्या सलाइए कर वेखै।

झूठ बोले मन मुखरों खुआर जस पूर्व होवे लिखिया ते सतगुर मिले पतार सुहावे सब उतार तरे गल पहरे खिमा सिंगार पाइये सोहरे सो सो बा पाए जस पूज करे सब संसार ओ रलाई किसे दी ना रले जस रावे सरजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागनी जिस अविनाशी पुरख पतार मला पहला सुहा रंग सुपने नसी बेंता के गलहार सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरियाईया चार पौड़ी ए जग आप उपायन कर चूज बडान पांच धात विच रखियन मोह झूठ गमान आए जाए परमाइय मनमुख अग्ञान एक न आप बुझाइयन गुरमुखार ज्ञान भगत खजाना बख्शियन हर नाम निदान सलोक मल्ला तीजा सुहिए सुहा वेस छाड़ तू ता पर लागी प्यार सुहे वेस पर किने न पायो मनमुख तज मुही गवार सतगुर मिलिये सुहा वेस गया होमे विचो मार मन तन रत्ता लाल हुआ रसना रत्ती गुणसार सदा सुहागण शब्द मन पहै करे सिंगार नानक करमी महल पाया पर रखिया अवतार मला तीजा मुंदे सुहा पर हरो लाल करो सिंगार आवन जाना विसरे गुर शब्दी विचार मुंद सुहावी सोहनी जिस घर सहज पतार नानक साथन रावीए रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड कटो बह मनमुख मुगद राता होमे मेरा करम हुए कछु साथ न लता सिर उपर जमकाल न सोजे दूजे परमिता फिर वेला हथ न आवे जमकाल वस किता जे हथ हुर लिख पाई से करम कमिता सलोक मला तीजा सतियां सतियां सतियां ए न आखियन जो मड़िया नाल जड़न नानक सतियां जानियां जे बिरहो चोट मरन मला पहला सो भी सतियां जानियां सीर संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ समालन मला।

आग जलाए, भावे जियो कहे मारो दूरों ही भज जाए पौड़ी। तुद दुख सुख नाल पाया लेख करते लिखिया, ना मैं जेवड होर दात नहीं ते सरूप न रखिया, ना मुखोट नदान है गुरमुख मन वसिया, कर कृपा नाम देवसी फिर लेख न लिखिया, सेवक भय सो जन मिले जन हर जप जपया, सलोक

प्रताप दुख बिन से सुख आनंद परवेसा त्रिष्ण बुद्धिमान सृष्ट कौ माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक आला बिलावल महला पंजमा जिते उपजात सह पछान परार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम होय कल्याण राह गुरपुरा भेट्यो बड़पागी अंतर जामे सुगड़ सुजान हाथ दे राख्या करे अपने प्रभु समरथ निमाने को माने ब्रह्म पै बिन सगाय खन पितर अंधकार प्रगट जा नारायण सा सास राधे नानक सदा सदा जाये कुर्बान बिलावल महला पंजवा दोवे थाव रखे गुर सूरे हल्द पल्द पार ब्रह्म सवारी कार्ज होय सगले पूरे राहो हर हर नाम जबत सुख साय दे मजन होवत साधु तुरे आवन जान रहे तित पाई जन्म मरण के मिटे बसूरे ब्रह्म पै तरे छुट पै जम के घट घट वेख रहा पर पूरे नारिक सरण पर दुख भंजन अंतर बाहर पेखा जूरे बिलावल महला पंजमा दर्शन देख दुख नसे कब न हो अधिष्ठा गोचर दी के संग बसे रहो प्रीतम प्राण आधार स्वामी पुर रहे प्रभ अंतर धामी क्या गुण तेरे सार सुमारी साथ साथ प्रभ तुझे चेतारी कृपा निद प्रभ दीन दयाल दी जिंदगी करै प्रतिपल आठ पैर तेरा नाम जन जाप नानी प्रीत लाई प्रभ आप बिलावल महला पंजमा तन तन जोबन चलत गया राम नाम का भजन किन्नो करत बेकार ने सुपोर पया राह।

अपन मैं से देखा जाना सो मंगा तमरो ध्यान तुम्हारो रंगा तुम्हारी सेवा तुम्हारे अंगारा जन के टल संपाकन जन से उठन बैठन जन के संगा जन चार राजमुख मात लाग आशा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जन के निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जनके तुर के अमजन नानिक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महल्ला पंचमा जो पावे तुम मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु बारक तुम पिता कृपाल राहु मोह निर्गुण गुण ना ही कोई पहुँच न सको तुम रि काल तुमरी घट में तुम्हें जान दियो पिंड सब तुम रहो माल अंत दामे प्रकृत स्वामी अनबोल।

देखो नाथ जलत अग्न में जाने आप धारे कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्त हार सिमरत शरम सगले दुख लाथ सिमरत शरम सगले लाथ निध निधान नान कर सेवा अवश्यान सगले आकाथ बिलावल महला पंजमा अपने सेवक को कब ना बेसारो वरदला को स्वामी प्रभु मेरे पूर्व प्रीत गोविंद विचार रहो

भोखया गुने अवगन प्रभ काच ना विचार्यो कर कृपा अपना कर लया तल बढ़ाया चौथे अविनाशी नानक उचरे हर की जया बिलावल महल्ला पंजमा।

राखो मन माहिराव तीर्थ कर भरत फुन राखे न मनवा बस दाखो न फल तरमताय तुम मानो साज कह तुम जासो।

प्रभु मिलावे, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हों तस्वेट हों बल बल घूम गईया, अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले, जा सत सत सत गुर शरण पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकुर, महल न पावे मन मुख पर मैया, गुर गुर करत शरण जे आवे, प्रभ आए मिले खिन ढील न पैया, कर कर किरिया चार बधाए, मन पाखंड कर्म कपट लो बहिया, बेसुआ के कर बेटा जन्म ने जन्मया, पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत कर भगत भगत करते हर पाया, भगत भगत करते हर पाया, जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन में प्रभ आण आण मेहंदी पीसाई, आपे कोल कोल अंग लैया, जिनको ठाकुर कृपा तहारी, बां पकड़ नानक कढ़ लैया, राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी कर बारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

हाउ प्रभ चरण कमल अपार हो जाओ सद बलिहार मन प्रीत लागी ताहे तज आन कते ना जाहे हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन चढ़नाव संत उधार मैं तरे सागर पार मन डोर प्रीतम प्री मैं डोर प्रेम प्रीत यह संत निर्मल।

रहाओ संसार बिखिया कूप तह ज्ञान मोहत कूप गह बुझा प्रभ जी ले हो हर नाम अपना दे हो प्रभ तुझ बिन नाही नहीं ठाओ नानका बल बल जाओ लोभ मोहे बादी देहे बिन भजन होवत खेहे।

0: नानक जनका दासन दसना
1: प्रभु को सिमरहे से तनवंते
0: प्रभु को सिमरहे से पतिवंते
1: प्रभु को सिमरहे से जन परवान
0: प्रभु को सिमरहे से पुरख प्रदान।

0: प्रभु को सिमरे तिन सत बलिहारी
1: प्रभु को सिमरे से मोख सुहावे
0: प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे
1: प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता
0: प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को सिमरे तिन अनंत कनेरे।

बलो जी वाहिगुरू। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याई। फिर अंगद गुरते अमरदास राम दास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे साहब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करना उन दे आवे ताई। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके बल जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मुरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपया वंड की छकिया देख चलाई देख वाही देख के अंडिठ कीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े ताना रै नाल चरवाए सिखी सिदक केसां सवासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी का वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथिया रिया देग तेग फतेह। बिरद की पैज रहे पंथ की जी श्री साहिब जी सहाये खालसा जी के बोल बाले बल जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जगो जुगा टल धर्म का जयकार बल जी। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार दियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा संभालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दे माण सतगुरु नितानियां दे ताण न्योटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ओ अरदास बेनती है आप जी दियां रहमतां सदका पावन हजूरी विखे दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच शहीदां दे सरताज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे शहीदी पुरब दे आगमन वजों समूह संगतां वल्लों अमृतमई बाणी श्री सुखमनी साहिब दे जाप होए चौपे जी के पाठ श्री पुड़ी आनंद साहिब जी की अरदास। अखरवाद काट भुल चुक माफ करनी अगों वास्ते शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न दी सावधानता बल ते जाओ बख्शिश करना। अज दे श्री सुखमनी साहिब दे पाठां दी सेवा गुरसिख परिवारां वल्लों होई दर घर दे सेवक बीबी जी राजविंदर कौर वल्लों सरदार गुरदेव सिंह दी मिठी प्यारी याद मनाउंदिया होया अते समूह परिवार दी तंदरुस्ती लई अरदास बेनती सतगुरु जी रहमत करनी विशी आत्मा नूं सदीवी काल वास्ते अपने चरणा कमलां च निवास बख्शना। परिवार दे सिर ते रहमतां भरे हथ रखना सुख शांतियां प्रदान करनियां तंदरुस्तियां बख्शनियां अंग संग सहाई होना। दर घर दे सेवक भाई हरप्रीत सिंह जी वल्लों दित्तियां दातां दा शुकराना करदिआं कारोबार दी चढ़दी कला लई अते समूह परिवार दी सुख शांति लई आप जी दे चरणां दा ओट आसरा लै ने सतगुरु जी रहमत करनी। समूह परिवार दे सिर ते रहमतां भरे हथ रखना चढ़दियां कलां दी दात बख्श के कृतार्थ करना किरत कमाईआं च बरतां कारोबारां च वाधे हर दीवान हर मैदान फतेह बख्शनी अंग संग सहाई होना। दर घर दे सेवक भाई इकबाल सिंह जी संधु बीबी जी जसविंदर कौर संधु वालों अपने बेटे गुरवीर सिंह अते जगमीत सिंह दे जन्म दिन की खुशी अंदर अते समूह परिवार की चढ़दी कला लई आप जी दे चरणा दा ओट आसरा लै रहे ने सतगुरु जी रहमत करनी। बच्चों के सिर ते रहमतां भरे हथ रखना दीरगार जा माता पिता दे आग्याकार मन नीवा मत उची गुरसिखी जीवन की बख्शिश करनी अंग संग सहाई होना। दर घर दे सेवक भाई राजेंद्र सिंह जी बीबी जी भुपिंदर कौर वालों समूह परिवार की तंदरुस्ती चढ़ती कला वास्ते अरदास बेनती सतगुरु जी मेहर करनी। सेवक परिवार के सिर ते रहमतां भरे हथ रखना तंदरुस्तियां की दात बख्श के कृतार्थ करना। दर घर दे सेवक भाई गुरप्रीत सिंह दे जन्म दिन की खुशी अंदर परिवार वालों अरदास बेनती अते राजवीर सिंह दे जन्म दिन की खुशी अंदर अरदास बेनती सतगुरु जी मेहर करनी।
ਸੀਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਛਾਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪੜਦੇ ਟੱਕਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।

फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम अपना, तन मन होए निहाल।

नामे नाम समावै गुरमुख भगत करहो सद प्राणी हृदय प्रगास होवै लिव लागै गुरमत हर हर नाम समाणी रहाऊ हीरा रत्न जवेहर माणक वौ सागर भरपूर किया जिस बड भाग होवै बड मस्तक तिन गुरमत कड कड लियाऊ रतन जवेहर लाल हरनामा गुर काड तलही दिखलायाऊ भागहीन मनमुख नहीं लिया त्रिण ऊलै लख चपाया मस्तक भाग होवै तुर लिखिया ता सतगुर सेवा लाई नानक रतन जवेहर पावै तन तन गुरमत हर पाए राम कली महला चौथाऊ राम जनहा मिल भया आनंदा हर नीकी कथा सुनाए दुरमत मैल गई सब निकल सतसंगत मिल बुद्ध पाई राम जन गुरमत राम बुलाए जो जो सुने कहे सो मुक्ता राम जपत सोहाय रहाउ जे बड़ भाग होवे मुख मस्तक हर राम जना पेटाए दर्शन संत देहो कर कृपाऊ सब दालद दुख लह जाए हर के लोग राम जन नीके भागहीन ना सुखाए ज्यों ज्यों राम कहे जन ऊचै नर निंदक डंस लगाए त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाई हर के सखा सखाए से हर के चोर बेमुख मुख काले जिन गुर की पैज ना पाए दया दया कर राखो हर जियो हम दीन तेरी शरणाए हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे जन नानक बख्श मिलाए राम कली महला चौथा हर के सखा साध जननी के तन ऊपर हाथ पतावै गुरमुख साध सी प्रभ पाए कर कृपा आप मिलावै राम मोको हर जन मेल मन पावै अम्यों अम्यों हर रस है मीठा मिल संत जना मुख पावै रहाउ हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पद भी पावै हम होवत चेरी दास दासन की मेरा ठाकर खुशी करावै सेवक जन सेवे से बड़ भागी रिद मन तीन प्रतीत लगावै बिन प्रीति करहे बहु वाता कूड़ बोल कूड़ो फल पावै मोको तार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगीले पावै हो काट्यो काड़ बाड़ सिर राखियो जित नानक संत चढ़ आवै राम कली महला चौथा जे बड़ भाग होवे बड़ मेरे जन मिलदियां ढिल ना लाइयै हर जन अमृत कुंट सर नीके बड़ भागी तित नवाइयै राम मोको हर जन कारे लाइयै हौ पानी पखा पीस्यो संत आगै पग मल मल तूर मुख लाइयै रहाउ हर जन बड़े बड़े बड़ ऊचे जो सतगुर मेल मिलाइयै सतगुर चीवड़ अवर ना कोई मिल सतगुर पुरख ते आइयै सतगुर शरण परे जिन सतगुर शरण परे तिन पाया मेरे ठाकर लाज रखाइयै एक अपने स्वाए आए वह गुर आ गए ज्यों बगुद समाल लगाइयै बगुला काग नीच की संगत जाए क्रंग विखू मुख लाइयै नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराइयै राम कली महला चौथा

बाबा आया है उठ चलना आध पंद है संसारो वा सिर सिर सचड़े लिखिया दुख सुख पूर्व विचारो वा दुख सुख दिया जे हा किया सो निभ दी नाले।

नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कई गुरु नानक रई त्याय। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराम श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करना उन दयावे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवा पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। दसवा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान तरके। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहबजादिया चालिया मुक्तिया शहीदा मरीदा हठिया जपिया तपिया सिदकवाना जिन्हां नाम जपया वंट की छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ किया सचारिया प्यारिया की कमाई का ध्यान तरके। बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए सिखी सिदक केसां श्वासां संग निभाई तिन्हां की कमाई का ध्यान तरके। बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां का ध्यान तरके। बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेता वै चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रख्या रहा देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले। बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी की दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जगो जोगा टाल धर्म का जयकार। बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दी सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा संभालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो नमाणियां दी माण सतगुरु नताणियां दे ताण नेउटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अरदास बेनती है आप जी दे अटल हुक्मां दी तावील करदियां दर करदे सेव भाई कश्मीर लाल जी जेहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सदे उठी जाहे जी मावा कंसा सेवकां नूं आप जी ने जितनी आरजा बख्शिश कीती सी संसार के यात्रा संपूर्ण करदिया होया परलोक प्याना कर गए सन उन्हां दे पंज पौत सी नूं अंतम संस्कार तो उपरांत समूह परिवार अते संगतां आप जी दे दरबार दे विच पुज्जियां विछड़ी आत्मा दे निमित अलाणियां दे पाठ सत जी दे पाठ शब्द कीर्तन होए बाणी पढ़दिया अनेकां भुल्लां हो गईयां होणगीयां अलपग जान के खिमा करनी अगों वास्ते समत बख्शना अमृतमई बाणी दा पहाओ शीतलता विछड़ी आत्मा नूं परलोक विच सहाय करना सदीवी काल वास्ते अपने चरणा कमलां च निवास बख्शना वागुण दे गेड़ तो रहत करना पिछे सरबत परिवार साख संबंधियां दे सिर ते रहमतां भरे हथ रखना भाणा मन्नण दा बल बख्शिश करना परिवारां विच सुख शांतियां प्रदान करनियां दर आईयां संगतां दीयां हाजरियां दर प्रवान करनियां परिवार वालों बख्शिया दातों विचों आप जी वास्ते सुंदर रुमाले हाजिर हुए अंगीकार करने सेवकां दे लोक परलोक पड़दे टकने दरों करो नामदान सिखी सदक भरोसे की दात बख्श के कृतार्थ करना कड़ा प्रसादी देख दर ते हाजिर है प्रवान होए प्रवान होया प्रसाद सरबसात संगत च वरताउण की आग्या होवे पावन हुक्मनामे बख्श की संगतां नूं कृतार्थ करो सही प्यारे मिलो जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता वे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की दबे चलायो पंथ सब सिखां को हुक्म है गुरु मान्यो

अहन सहज सुभाई, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, तनासरी महला पंजवा। तुम दाती ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारी,

अनंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिया रहाऊ, कोट पराध हमारी खंड हो अनक विधि समझावहु। हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहु। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले